उच्चारण किया होया। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। जिथे पटा ने यह गल कही उथे भाई गुरदास जी ने भी अनेक पौड़ियां उचार के यह गल कही। पर जद असी धन गुरु नानक साहब जी वाल देखते हाँ, अकाल पुरख का रूप होंदया होया भी धन गुरु नानक साहब ने कहा, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचार, कोई मैनू पूतना आखद, कोई बेताला आखद, कोई आखद ए ते नानक विचारा, ते कोई कहिंदा ए नानक दीवाना है। किसे नूं कोई माड़ा कवे ते जिस नूं माड़ा के है वो कदी नहीं कवेगा कि मैनू किसे ने माड़ा के। हर इंसान अपनी वड़ियाई चाहता है, पर धन गुरु नानक साहब गुणा दे खजाने वड्याइया दे खजाने, पर फिर भी गुरु हो के ये निम्रता शब्द विच

तू सकाल पुरख दा दीवाना हां, हों हर बिन अवर न जाना, मैं हरी तो बगैर होर किसे नु भी जानदा नहीं, होर किसे अगे मैं झुकदा नहीं, ते दीवाना भी मैं उसे हरी दा हां। पर एक गल कही तो दीवाना जानी जां पै दीवाना होए, असी ते उन्नू दीवाना आखदे हां जेड़ा रब दे डर विच रब दा मन विच डर रखे, रब दे पै विच जेड़ा रहिंदा है ओ दीवाना है। अते नाल के है जेड़ा एकाकार कमाए, एक परमेश्वर दे हुक्म विच रवे, परमेश्वर दुख देवे पावे सुख देवे, जेड़ा उस परमेश्वर दी बंदगी करदा है, साहब जी कहंदे हन असल विच ओ दीवाना है। ते नाले के है हुक्म पछाणे खसम का, खसम उस अल्लाह वाहिगुरु राम नू के है कि जेड़ा अपने खसम दा परमेश्वर दा हुक्म पछाणदा है, हुक्म मनदा है, अपनी सियानप नहीं वरतदा, असल विच ओ परमेश्वर दा दीवाना है। ते नाल ए भी कहा तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, ओ दीवाना है जेड़ा अपने मालक नाल प्यार करदा है, मंदा जाने आप को आवर पला संसार, जेड़ा अपने आप नू मंदा समझे संसार नू चंगा समझे, असल विच ओ दीवाना है। अक्सर देखदे हैं लोग आप ते औगणा दे परे हैं, अपने औगण लुकांदे हैं ते दूसरियां दी बुराई करदे हैं, पर सतगुरु जी कहंदे हैं अपनियां बुराइयां दुनिया तू लुको सकदा है पर परमेश्वर तू नहीं, उस वाहेगुरु अल्लाह तू नहीं, क्योंकि ओ सब कुछ जानता है। धन गुरु नानक साहब जिन्हें कदी किसी नु माड़ा नहीं किया। एक नगर विच गए, उस नगर दे लोका ने धन गुरु नानक साहब नु आदर नहीं दिता, सगा पत्थर मारे, ते धन गुरु नानक साहब कहन लगे उन्हां लोकां वल देख के वसदे रहो। फिर दूसरे नगर गए, उत्थे दे लोकां ने बड़ा आदर मान कीता, बड़ी सेवा कीती, ते धन गुरु नानक साहब ने कहा तुसी उजड़ जाओ। ता सेवक ने पूछिया महाराज जिन्हां पत्थर मारे उन्हां नू कहा वसदे रहो, ते जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां नू कहा उजड़ जाओ, ये क्यों कहा? तां गुरु नानक साहब कहन लगे भाई जिन्हां पत्थर मारे जिन्हां दे मन विच बुराई है, जेड़े नेकी नहीं करते, असा उन्हां नू कहा वसदे रहो इत्थे ही रहो, क्यों कि जे किधरे होर जावोगे उत्थे भी बुराई फैलावो, ते जिन्हां ने की कीती उन्हां नू इस वास्ते कहा उजड़ जाओ, भाव कि होर जगह जाके वसो, तुसी नेकियां करदे हो तां कि तुहाडे वल देख के दूसरे लोग भी नेकियां करन। पत्थर मारन वालियां नू बुरा नहीं कहा, सगा सतगुरां ने कहा ए लोग बुराई करते हैं, इन्हां दी मत इतनी है, ते जे धन गुरु नानक साहब नू पूछिए महाराज तुहानू लोग दीवाना कह रहे हैं, मस्ताना कह रहे हैं, ते साहब जी कहंदे हन भाई सचमुच मैं दीवाना हाँ,

तू कोई भी है किसे भी मजहब का मनण वाला हर इंसान दे नाल प्यार कर क्योंकि जद इंसान अपने आप नूं कुछ ना समझे एहो ही समझे मैं कुछ नहीं जो है मेरा परमेश्वर है फिर मन विच दुबदा ईरखा निकल जाती है और इंसान के सामने की रह जाता है एक परमेश्वर ते जद मन विच परमेश्वर होगा फिर वैर विरोधी भावना आपे खत्म हो जाएगी ते जिस मन विच परमेश्वर का नाम आ जाएगा फिर उत्थे इन्हां शब्दां दा वासा होगा दुबदा दूर होगी ते फिर इंसान अपने साहिब नाल अपने मालक नाल प्यार करेगा अपने आप नूं मंदा ते दूजे नूं चंगा समझेगा ऐसी अवस्था जद मन विच आ जावे ते समझो ओ इंसान

मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे, पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे? वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले, उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा? वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है, क्या आप सारा रास्ता साफ कर लोगे? वो फिर छात्र बोला, देखो जे मेरे से ये रास्ता साफ नहीं हुआ, लेकिन मैं यहां पर ही रुक जाऊंगा, जो दूसरे रास्ते पे आने वाले आएंगे मेरे पीछे, उनके साथ उनको लेकर रास्ता बनाऊंगा। उस्ताद बोला, तर्मी कहलाने से कोई तर्मी नहीं बनता, तर्मी बनने से तर्मी बनता है। देखो ये छात्र अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है। तर्मी अपने जीवन के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। तर्मी अपने आप को तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरों को सुख बरसाता है। परोपकारी जो है, दूसरों के भलाई के लिए सदा ही तत्पर रहता है, अपने आप को त्याग में पाकर दूसरों को सुख देकर जीवन की जुगती बताता है। तर्मी कहलाने से कोई तर्मी नहीं, तर्मी बनने से तर्मी है। अपने आप को सिख कहलाने से कोई सिख नहीं, सिख बनने से सिख है। अपने आप को सत्संगी कहलाने से कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी बनने से सत्संगी है। अपने आप को साहिब का सेवक कहलाने से कोई सेवक नहीं, सेवक बनने से सेवक है। आज भाई गुरदास जी इसे ही पितर वचन के लिए एक पौड़ी में ऐसे बताते हैं, एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों के लिए एक वृक्ष का प्रमाण देकर हमें ऐसे समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, आओ रचना पितर करिए। उनका ये पितर शब्द सब साथ में साथ लेकर गुरु की अपार कृपा से गायन करें।

एक सफल रुख है, पर इदा नाम है अमृत, जिन पिया ते तृप्त पाए। ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता ओ तृप्त हो गया, क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं। दुनिया दे पदार्थां विच सुख नहीं, एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती। आज इतनी माया है, गुजारा हो रहा है, पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए। एक चीज घर विच है, पर मन दी इच्छा होर वध गई, होर चीज चाहिए। दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं, पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया, नाम जप लिया, उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है। ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता, साहब जी कहंदे ने, हौं तिन बलिहारे जाऊं मैं उन्हां तों।

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जद इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नू दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नू जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नू दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

मन से तोखा तान लहे जा सिफत करे अरदास। कई लोग कहंदे ने जदों भी पाठ करन बैठिए भजन करन वास्ते बैठिए मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार ने, मन दी पटकना ताई खत्म हो सकती है। मन दे परम ताई दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास करी और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफतो सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर होणगे और परमेश्वर दी खुशी भी प्राप्त होवेगी।

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक सिंह

सिर तां कटवा दिता, पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पहुंच सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

0: देह बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रहे। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतां की बाणी, संतां की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारयां की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र कीती है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआं दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कुछ उपाव मुक्त का कर ले। कहिंदे कोई अपना उपा कर ला, कोई जतन कर ला। ये जो तैनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसी जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उस दी क्या मेहर है, सानू उसने ए अमोलक जन्म दे दिता है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: ब्रेन दे दिता है, दिमाग दे दिता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साथ संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दिते हैं, जबान दे दिती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दिती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसदे हन जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहिंदे रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन अधिष्ठानी।

0: राम अय्या के गुण चेत प्राणी उस परमात्मा ने गुणा नु कुछ याद कर अकृत घाना मन कुछ याद कर चेते कर राम अय्या के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी ते क्या तेरी जो जड़ है कित्थों तू पैदा होया है कवन मूल ते कवन दृष्टानी की दिस रहा है क्या नजर आ रहा है तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टर को भजे फिरते हैं अस्पतालों भजे फिरते हैं ही अखा च थोड़ा जा फर्क पै जाता है कन्ना च सुन दी दंदा दी होर सास सुन कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कितना औखा हो जाता है जिसने सारा शरीर दिता है। राम अय्या के गुण चेत्र प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत्व उसने किवें इकट्ठे किए हैं पंजा तत्वों का कितना सुंदर पुतला तैयार किया है जिस दे विच ए रूप आई है आत्मा पाई है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: साहिब कै फरमाया जियो देही विच आए पाया जो उस दा हुक्म हुंदा है। इस रूह नू आत्मा नू पंज तत्त दा पुतला पंज तत्तां दा ए घर पंज तत्तां दी ए गड्डी पंज तत्तां दा ए रथ शरीर ए प्राप्त होया ए अकाल पुरख दी कृपा है। अकाल पुरख दी मेहर है कितना दिमाग कम करदा है किवें कम कर रहा है ए माता पिता दी कृपा तां नहीं है ए तां अकाल पुरख दी कृपा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: शरीर दी रचना तां उसने कीती है। सो अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा है जो उसने सानू ए हथ पैर दे दते हैं अखां दे दतियां हैं ए शरीर दे दता है शरीर दे विच चलन की शक्ति पा दती है ए रूह नू ए जड़ा है ए शरीर बख्श दता है ए अकाल पुरख की कृपा है ए वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा है। इस विच अपनी कोई ताकत नहीं है ते दूसरी कृपा जीव की मनुख की अपने आप ते हुंदी है कि यह प्रभु का परमेश्वर का नाम जपे सत्संगत करे सेवा करे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने आप ते कृपा करे कुछ मेहनत करे उद्यम करेंद्या ज्यू तू कमाव दया सुख पुंच ध्याय दया तू प्रभु में नानक उतरी चिंत। यह अपने आप ते कृपा करे संगत विच जावे वैसे यह भी कृपा वाहिगुरु परमेश्वर की है संगत विच जो सत्संगत की प्राप्ति है। फिर इसने क्या कृपा करनी है गुरु दे वचना नू कमाउना है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने आप ते कृपा करनी है दूसरी कृपा अपने आप ते करनी है यह नहीं कन च नू पा के दूसरे कन च नू नहीं कढ़ना है ते असी कमाउन की कोशिश करनी है असी दृढ़ता दे नाल सेवा करनी है सिमरन करना है उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है अकृत कर नहीं होना है नाम जपना है ये अपने आप ते कृपा है। फिर तीसरी कृपा गुरु करता है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: तीसरी कृपा गुरु करता है गुरु कृपा की करता है जे कोई अपना गुरु दे वचना नू कमाउंदा है सत्संगत करता है सेवन सेवा करता है सिमरन करता है नाम जपता है फिर गुरु की कृपा दे गुरु कृपा करता है गुरु उस नू परमात्मा दे नाल विछड़े हुए नू मिला देता है। बोलो पहली कृपा तो वाहिगुरु ने कर दी अकाल पुरख ने कर दी सानू ए मनुखा जन्म दे दिता है अखां हाथ पैर ए शरीर इंद्रिय सानू बख्श दते हैं। दूसरी कृपा असीं अपने आप ते खुद करनी है तीसरी कृपा गुरु करनगे। बोलो।

0: जे को वचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी करिया। जो आपां इस संगत विच विचार रहे हैं गुरुआं दे वचन ने, संतां दे वचन ने, साधुआं दे वचन ने, जितनी भी गुरबाणी है बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सब संतन के वचन इकट्ठे कीते हुए हैं। सो जो आपां सारे रल के ए विचार रहे हैं कि सानू की करना चाहिंदा है की नहीं करना चाहिंदा है, जे को वचन कमावै सो ये अपने आप ते असी कृपा करनी है। इसनु असी फिर गुरु महाराज ने कमावा वचन लिखा, जे को वचन कमावै कमावै संतन का, कमाउण वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। सो इन्हां वचनां नू कमाउण वास्ते सानू मेहनत करनी पवेगी, कुरबानी भी करनी पवेगी, सानू जिहड़ा है इस वास्ते घालना करनी पवेगी, किसे काम नू घालना, क्योंकि घालना घाले तो बिना यह काम नहीं हो सकता है। सो फिर तीसरी जड़ी कृपा है, तीसरी मेहर है, गुरु करदा है, गुरु प्रसाद दी तरी है, फिर गुरु दी कृपा हुंदी है। जे को वचन अपना गुरु दी कृपा, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए, फिर पूर्ण कृपा मन बस, जो मन बस विच आ जांदा है। सो गुरु साहब एक तीसरी मेहर करदे हन, कृपा करदे हन, किन्हां ते, जो अपने आप ते ये कृपा करदे हन। बोलो पहली कृपा सुनी अकाल पुरख ने सानू कर दिती है, इस देही को सिमरा देव सा देही बाजार की, वजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही ला। इस शरीर नु जिस नु देव ते तरस रहे हैं, उस शरीर सानू बख्श दिता है। गुरबाणी गुरु महाराज ने कृपा की है, दसा जामिया के अंदर कितनी कृपा की है, गुरु साहबान ने तत्तें ते व्यते बैठ कर करके सारे अपने परिवार नु बार करके अमर दी दात, सिखी दी दात, जो ए गुरु साहब जी ने कृपा की है, दसा जामे ने अंदर बहुत ही बख्शिश की है। गुरु नु असी मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु परमेश्वर का दूसरा स्वरूप है। वो सपना गुरु परमेश्वर का निर्गुण जो परमेश्वर है, निर्गुण जो परमात्मा है, वो नजर नहीं आता है, परंतु जे उस नु सरगुण स्वरूप दे विच देखना तो गुरु का दर्शन परमात्मा का दर्शन है। बोलो सो कौ टल गुर सेवी है, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हो, ऐसे संबंधी नूर अरसों परसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म। गुरु का दर्शन परमेश्वर का दर्शन है, जिमे सत संगत निर्गुण निर्गुण जो वैकुंठ है, निर्गुण सचखंड है, जो साडी दृष्टि दे विच नहीं आउंदा। गुरु जी कहिंदे हन सचखंड वसै निरंकार, परंतु सरगुण सचखंड जो है ए साध संगत जो है, सच्ची संगत है, जिथे परमात्मा दा इकट्ठे होके सिमरन किया जाता है, जाप किया जाता है, हरि जस किया जाता है, ए सरगुण सचखंड है। बोलो सतनाम
1: श्री
0: वाहे, सरगुण वैकुंठ है। कहो कबीर यह कही है, काहे साध संगत वैकुंठ, साध संगत सचखंड दा सरगुण स्वरूप है। सो साध संगत ऐसे तरह जो गुरु गुरु जो है ए परमेश्वर दा परमात्मा दा सरगुण स्वरूप है। गुरु दा दर्शन, गुरु नु असीं इस करके मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, अरदासां बेनतियां करदे हां, है तां शरीर गुरु दा साडे वर्गा शरीर सी, जिन्हां ने उस ते विश्वास नहीं कीता, भरोसा नहीं कीता, उन्हां दा भला नहीं होया। जिन्हां ने गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु तो परमेश्वर नु एक जाणिया, गुरु ते विश्वास कीता, धन गुरु नानक ते विश्वास कीता, गुरु दशमेश पातशाह ते विश्वास कीता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते भरोसा करनगे, उन्हां जीवां दा उधार हुंदा है। उन्हां नु गुरु जड़ा है ज्ञान बख्शदा है, वह ज्ञान बख्शदा है, दुनियावी ज्ञान जो है ए तो एक दुनिया दे विच रहण वास्ते, कुछ बंदा किसी काम दे विच किसी खेते दे विच एक्सपर्ट हो जाता है, परंतु गुरु जो बख्शदा है ए ब्रह्म ज्ञान बख्शदा है, आत्म ज्ञान बख्शदा है, रूहानी ज्ञान बख्शदा है, विछड़े हुए जीव नु परमात्मा दे विच मिलाउंदा है। इस करके आख्या, जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ, दरगाह दा वसीठ, दरगाह दा वकील, वकील जो है। जे सोचन दा उग वह सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन कोर, गुरबिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना। जितना मर्जी यह मनुख दुनियावी ज्ञान इकट्ठा, किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लवे, परंतु परमेश्वर दी समझ गुरु तो बिना नहीं आउंदी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे गुरु,
0: कितना कुछ भी यह बन जावे, जा माइक पदार्थ इकट्ठे कर लवे, गुरु जी कहने नव खंडन को राज कमावे अंत चलाए गो हारी। अंत नु गुरु तो बिना, परमेश्वर दे नाम तो बिना मनुखा जन्म दी बाजी ए जीव हार जांदा है। बोलो।

0: अकी चढ़ाओ चरंदा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पूछा सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण गुरु जो जिन्हां दा होंदा है ओ नरकां विच नहीं जांदे, नरक सुरग ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद। कबीर जी नू बेनती की थी, भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते नरक भी निंद दिते, कोई सच खंड तुहाडा है भी सही? ता कबीर जी कहंदे ने भाई मेरा सच खंड ता साध संगत है। उचारण करो श्री
1: वाहेगुरु।
0: मेरा सच खंड ता साध संगत है।

परम हंस क्यों कहा जाता है। पाई साहब पाई गुरदास जी गुर सिख नूं परम

मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा सिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ऐ मनुख तू अमोलक हीरे लालां तो भी महंगे अपने श्वास धंधियां विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी न्याई हन, जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना ले जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके ले जाए, रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है अपनी उठदा है, पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है, तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नूं खरीद के अपने आप नूं बड़ा धनवान समझना है, बड़ा बलवान समझना है भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार होंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चलिया, उसे वेले तोड़ लई। कबीर जी वेख के हैरान हो गए, आख्या कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई नाल की जाएगा, हजूर कहंदे नाल इना जेड़े अमोलक श्वास तेरे हन इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा, ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन बड़ा अमीर सी, हजूर कहन लगे नाल ता एक सुई भी नहीं जानी ते तू इना धन कट्ठा करी फिरदे। कहने लगा महाराज कृपा करो मैं बड़ी औखी कमाई कीती है ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल ले जावा। हजूर कहन लगे भाई नाल ता ले जा सकना है तू जे साडे आखे लगे, महाराज हुक्म करो। कहन लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़ बंदा नू वंड दे उदे नाम ते ते तेरे नाल चली जाएगी। उच्चारण करो श्री, इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया ओ मित्रा धन ता तू नाम दा कठा करना सी ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा, तैनू सोधी नहीं है कि इना अमोलक श्वासा नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

תוכמני. चौबी अष्टपतियां सठ कड़िया जे अद्धी कड़ी भी अजीब अगर सच्चे पातशाह दी बाणी पढ़ लवे फिर सुन सुन होवे परमगत मेरी। बाबा जी आख्या करदे सन भाई जे अपना ये लोक सुखी ते परलोक सुहेला करना है जे मन नीवा ते मत उच्ची करनी है ते फिर

की पवित्र बाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारियां श्लोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सैरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदिया भी देर नहीं लगती, जांदिया भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, ये वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी ये वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसन लग पे। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखन लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जाता है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखन लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिसदा नाम सी। इहने सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ऐ भलिया तेनू धन भी दिता, सोहणे महल भी दिते।